I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा
0: कपड़ा।

0: ईशा की नमाज का वक्त हो चुका है, तो चलिए छोड़ लेते हैं ब्रेक ईशा की नमाज के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद.
1: Stay tuned to Mehfil-e-Qawwani Radio.

0: Mehfil-e Qawwali. Radio 786, 100.4 FM Stereo.
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं महफिल कवाली सुफिया दलवी के साथ, आपका पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम, आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन और आपकी पसंदीदा फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉइस 100.4 एफएम पर. उम्मीद है आप ईशा की नमाज पढ़ चुके होंगे. तो वक्त आ गया है माँ बाप को सराहने का. ये अगला कलाम बहुत ही फुरसोज और बहुत जोरदार कलाम है, तस्लीम आरिफ साहब की आवाज़ में माँ बाप के ऊपर.

0: तो सुनिए दूल्हा मियां, ऐ दूल्हा मियां तुमको सेहरा पढ़ रहा हूं मैं आपका,
1: सेहरा पढ़ा जा रहा है।
0: मुबारक हो आपको, बहुत बहुत ये शादी।

के डायरेक्टर साहब जनाब भाई असरार सर, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी सुने तवज्जो।

हमारे दूल्हा मियां ने तकरीबन 2000 रुपए हमें शेरे का नजराना अपने हाथों से दिया। दूल्हा मियां के जो भाई हैं छोटे, मैं उनसे भी तवज्जो चाहता हूं और जितने भी उनके और भी अजीज व करीब जो रिश्तेदार यहां तशरीफ लाए हैं शादी में और उर्स में, आज देखिए बड़ा अच्छा खुशी का मौका है, उर्से मुबारक की महफिल भी है और शादी का जो मौका है उस मौके पर हम शेरा भी पढ़ रहे हैं। दूल्हा मियां के वालिद साहब, चचा, ताया, फूफा, मामू, दादा, दादी, वालिद और जो भी दोस्त लोग आए हुए हैं दिल्ली से और जहां जहां से भी, मैं सभी से

तभी लोग बड़े खुश हैं और खुश होना चाहिए। अच्छा ये इनके साड़ू और लड़की के बहनों ही साफ थे जो अभी बहुत सारे रुपए यहाँ पर लुटा कर गए। मेरा कहना है दूसरे

0: चाचाओं का या
1: भाई नाम लेने पे आऊं तो 50 नाम है, कोई अच्छा माने या बुरा माने। हाँ मियां हुजूर का नाम ले दूं, वालिद साहब है दूल्हा चाचा। अच्छा अच्छा हजरत हजरत सज्जादा नशीन सईदैन मियां, बाबू सईदैन मियां साहब सज्जादा नशीन। मैं बाबू सईदैन मियां जो सज्जादा नशीन है, ये शेरे का आखिरी शेर उनकी नजर कर रहा हूं।

अच्छा दुल्हन के भाई बैठे हैं असरारुल भाई, दुल्हन के भाई बैठे हैं सामने असरारुल भाई। आइए असरारुल भाई, देखिए जब दुल्हन को रुखसत करते हैं घर वाले तो दुल्हन क्या कहती है अपने भाइयों से, बाप से और खास तरीके से अपने वालिद से। दुल्हन ये कहती है, क्या कहती है, असरारुल भाई रुखसत के वक्त दुल्हन अपने बाबुल से क्या कह रही है।

जो कश्मकश है, हक असल में किसका है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। सामईन हजरात, आज मैं आपको शुरू से

संवारा है राजू खान जी ने, ये आवाज हाजी तस्नीम आरिफ की है और ये पेशकश है तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की। सामईन हजरात, इस वाक़े को सुनकर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये जंग ये कुरैशी क्यों हो रही है। तो लीजिए मुलाहिदा फरमाइए, ये दास्तान बैतुल मुकद्दस।

प्रोग्राम की समाप्ति का वक्त हो चुका है. उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे टेक्नीशियन बड़े होनहार इब्राहिम एब्रम्स का, जिन्होंने मुझे प्री रिकॉर्डिंग के लिए मदद की. और आप हमारे सुनने वाले, आपकी दुआएं और आपकी हौसला अफजाई. ये साल का पहला हफ्ता है 2025 का, तो आप दुआ है रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे और आपकी हर दुली मुराद, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी हर दिली मुराद को पूरी करें. इसी दुआ के साथ इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी बाकी रही तो अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे. इसके बाद आप सुनेंगे सलामी तस्लीम आरिफ साहब की आवाज़ में. फ़ी अमान अल्लाह, शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह खैर.